लेकिन जब हम स्याह रंग की बात करते हैं तो मतलब है कि कोई भी लहर मुनक्किस नहीं हुई, यानी कोई जिस्म अपने ऊपर पड़ने वाली सफ़ेद रोशनी के तमाम रंग जज्ब कर ले तो हम इसे स्याह रंग का देखते हैं। स्याह असल में रोशनी की अदम मौजूदगी का मफहूम रखता है। यही वजह है कि साइंसी नुक्ता नज़र से स्याह रंग को दीगर रंगों की तरह रोशनी की किसी लहर से तारीफ नहीं किया जा सकता। नतीजतन तकनीकी एतबार से स्याह कोई रंग नहीं है। स्याह रोशनी की अदम मौजूदगी की या फिर तमाम रंगों के इंजज़ाब की नुमाइंदगी करता है।

अस्सलाम वालेकुम साहब, नाम सदाए तुर्किया से मुखातिब है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जुलाई को हफ्ता है, इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप मनशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्सा 3 ईस्ट 4 वेस्ट पर भी सुन सकते हैं। सामिन, आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद से प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल खबरों के खुलासे से अख्ताम पजीर होगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल।

भाई साहब, पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा समाप्त मई तुर्किया फात व हंगामे हालात के दायरे के मुताबिक हफ्ते के सुबह सवेरे तुर्किया के मशरक की सुबह मलातिया में 5 की शिद्दत का जलजला आया है। मशरक उस्तम कशिद की सातवें मुसलसल रात में शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ईरान कशिद की बढ़ रही है तो कौमदन शहरी इलाकों पर हमलों की मुजम्मत की है। तुर्किया और अमरीका कासा पाबंदियां और F-35 तनाजे के हवाले से हल के करीब हैं। एक यूक्रेन ड्रोन हमले में मगरबी रूस के एक लॉजिस्टिक मरकज पर 7 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की अफात हंगामे हालात के इदारे के मुताबिक हफ्ते के सुबह सवेरे तुर्किया के मशरक की सुबह मलातिया में 5 की शिद्दत का जलजला आया है। अफात के मुताबिक जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:20 पर आया। उसका मरकज जिला बताल गाजी था, जिसकी गहराई 15.59 किलोमीटर बताई गई। जट के पड़ोसी सूबों अलाजी, अदियामान, तुंजेली, शानुरफा में महसूस किए गए। इधर का कहना है कि जल्जे के फौरन बाद नुकसान या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। माहौलिया शहरी तरक्की मौसम तब्दीली के वजीर मुराद कुरुम ने तुर्किया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एन सोशियल पर लिखा है कि जिला पताल काजिम जल्जे के बाद अब तक कोई मनफी नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन हम तमाम रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। मशरक वस्ती में कशीदगी सातवें मुसलसल रात में शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान ने अमरीकी हमलों में 3 इलाकों की इत्तला दी। कुवैत, बहरीन, उर्दन में मुतद अमरीकी फौजी मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान इंकलाब ने हफ्ते की सुबह कहा कि अब नहरबर्स में 2 तेल पड़ताल जहाज अमरीकी खुफिया एजेंसियों की हदायत पर माइनों से टकराने के बाद फट गए, जिसकी अमरीकी फौज ने तेजी से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान इंकलाब ने सरकारी टेलीविजन पर यह बताया कि उन्होंने इस अहम समुद्री गुजरगाह से गुजरने की कोशिश करने वाली 4 को रोक दिया है। पेरिस ने अमरीकी फौज ने ईरान पर ऐसे हमलों की इत्तला दी, जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के मुताबिक इसराइली अस्करी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए किए गए थे। दुश्मनों के दोबारा मुतसादम होने के बाद यह सबसे बड़ी कशीदगी थी। ईरान ने अमरीकी फौज पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया, जिनमें एक हवाई अड्डा, एक रेलवे स्टेशन, 2 पुल शामिल है। वो कहा कि इसने खत्ते भर में अमरीकी असासों को निशाना बनाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वार्निंग दी थी, मगर जुम्मे को अमरीकी की जानब से तस्दीक नहीं हुई कि अमरीकी अफवाज ने ऐसा करना शुरू कर दिया है या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मशीर मेयर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा, अगर अमरीकी हमले अगले 2-3 दिन तक जारी रहे तो तेहरान वसी पाने पर जहरान कार्रवाई दोबारा शुरू कर देगा। ईरान न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक रजाई ने बताया, ईरान अब खुद को सिर्फ मुतकाबिल एन के एन जवाब तक महदूद नहीं रखेगा और कोई सियासी सरहद महफूज नहीं रहेगी। ईरानी सरकारी खबर

हटाने का काम नहीं कर रहा। कनाडा के इमरजेंसी मैनेजमेंट वजीर एलनूर एलोवेस्की ने कहा, कनाडा अमरीका मुसलसल रबते में, उन्होंने जंगलाती आगों से लड़ने में बाहमी तावन की तवील तारीख की तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा, कनाडा ने 2020 से जंगलात की पायदारी आग की रोकथाम में $12 बिलियन की सरमाकारी की है। सलोत्की ने न्यू जर्सी के खुले स्टेडियम इतवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से खदशात खड़े कर दिए हैं। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में मेट्रो एरिया में हवा हसास ग्रुपों के लिए गैर सेहतमंद हो सकती है, जो जुमेरात के स्मोक के बाद एक हद तक बेहतरी थी जब मैनहट्टन का स्काई लाइन बामुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया, धुआं रात के हफ्ते की सुबह तक गाढ़ा हो सकता है। हाउस वर्ल्ड कप टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रियो जोलिन ने ब्रीफिंग में कहा, टूर्नामेंट के मुंतजमीन करीबी तौर पर इस हवाले से निगरानी का काम कर रहे हैं। इराक की वजारत उज़्मा के दफ्तर के मुताबिक इराक ने अमरीकी कंपनियों के साथ 48 माहदे शराकतें तय की, जिनमें से कई तेल के शुबे से मुतालिक हैं। ये माहदे वज़ीर आज़म अली ज़ैदी के दौरे अमरीका के दौरान किए गए। तेल से मालामाल इराक बरसों के जंग इंतशार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी खराब बुनियादी ढांचा, नाकाम अवामी खदमात, बद इंतजामी, जड़ पकड़ी बदअनवानी का शिकार है। खास तौर पर मशरिक वस्ती की जंग के बायस तेल की बरामदार रुक जाने से आमदनी में कमी होने के फौरन बाद फौरी तौर पर इक्तसादी इमदाद का मुहताज है। इराकी रहनुमा के मीडिया दफ्तर ने कहा है, कुल 48 माहदों तफाहम नामों तावन माहदों और शराकतदारी के ऐलान पर दस्तखत किए गए हैं, जो इराक और अमरीका के अवामी निजी शोबों के इदारों के दरमियान थे। इनमें वजारत तेल व वजारत बिजली के साथ एक्सिम मोबाइल के BRGE वोरनौदा शेल और हालीबर्टन के साथ तावन और शराकतें शामिल हैं। इस इराक शाम के दरमियान बड़े खाम तेल पाइपलाइन की तमीर से मुतलक मुतदद अमूर भी इसमें शामिल हैं। इराक ने स्टार लिंक के साथ भी एक मुआहदा किया है, जो आलमी सेटेलाइट मौसाती शोबे पर गालिब है, ताकि मुल्क में इसकी खिदमात मुतारफ कराई जा सके। मंगल को व्हाइट हाउस में एक मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ैदी की तारीफ करते हुए उन्हें चैंपियन करार दिया। ज़ैदी जो एक ताजर अमरीकी हमायत के साथ इस साल इकतदार में है, जब ट्रंप ने एक दूसरे उम्मीदवार को वीटो किया था। उन्होंने इराक की नाजुक मीशत को मजबूत करने, ऐसी ईरान नवाज मुसल्ला तंजीमों को गैर मुसल्ला करने का अज़्म जाहिर किया, जो अमरीकी तंजीमात को निशाना बनाती रही है। इराक तवील अरसे से इत्तेहादी मुल्क अमरीका और हमसाय ईरान के बाहमी मुकाबले असर रसूख के दरमियान तवाज़ुन कायम बरकरार रखने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ ही इस्ताए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। सामने हम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं। लीजिए अब तुर्किया के मायनाज गुलकार ओसजान देनिस और निरान इंसाल की आवाज में तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं अक्लम।

आज से ठीक 10 साल पहले कैलेंडर पर 15 जुलाई 2016 की तारीख थी। तुर्की ने अपनी तारीख की तारीख तरीन रातों में से एक का सामना किया। फेतों के दहशतगर्दों ने कौम का ही असलहा कौम के खिलाफ तान लिया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था, तुर्क कौम का गैर मुतजलजल अज़्म। अब हम उस तारीखी रात की तारीख पर घंटा ब घंटा, मिनट पर मिनट दोबारा नजर डाल रही हैं। मालूमात, दस्तावेजात और कभी ना भूलने वाली बहादुरी की दास्तानों के साथ। जुमे के रोज जब घड़ी ने रात के 9:30 बजाए तो दारुल हुकूमत अंकारा में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर से गोलियों की आवाजें गूंजी। अवाम जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, उसने आसमान की तरफ देखा। बागियों के कब्जे में मौजूद 16 तैयारों ने लोगों को खौफजदा करने के लिए अंकारा की फिजाओं पर निचली परवाजें शुरू कर दी थी। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। जैसे ही बगावत की कोशिश का पता चला, अंकारा के नडर शहरी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के सामने जमा होना शुरू हो गए। लेकिन दहशतगर्द बेरहम थे। फेतों के कातलों के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर से जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलने वाले मासूम लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई। आने वाले घंटों में जनरल स्टाफ के सरबराह खुलूस याका और आला दर्जे के कमांडरों को बागी एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी नामालूम मकाम पर ले गए। इसी लम्हे सबकी नजरें इस्तांबुल पर टिक गईं। न सिर्फ अंकारा बल्कि इस्तांबुल भी निशाने पर था। मुल्क को अफरा तफरी में धकेलने के ख्वाहिशमंद फेतों के दहशतगर्दों ने टैंकों के जरिए बास्फोरस पुल और फातिह सुल्तान मोहम्मद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रियासत ने इस बगावत के खिलाफ अपना सरकारी

बयान देने में देर नहीं की। रात 11:02 पर वज़ीर आज़म बिन अली यिल्दिरिम कैमरों के सामने मौजूद थे। दर हकीकत हम एक बगावत का सामना कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड के बगैर फौज के अंदर कुछ अफराद की जानिब से एक गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस बयान के ठीक चंद मिनट बाद रात 11:18 पर बागियों ने पहला बम आंकरा के ज़िला गोलबाशी पर गिराया। पुलिस एविएशन डिपार्टमेंट पर बुजदिलाना हमला किया गया। 16 जुलाई के इब्तदाई मिनटों में अगला निशाना मुल्की इंटेलिजेंस का दिल था। हेलीकॉप्टरों ने येनी मोहल्ले में वाकई MIT नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की इमारत पर फायरिंग कर दी, लेकिन इंटेलिजेंस एहलकारों ने हथियार नहीं डाले बल्कि अपने पास मौजूद असलहे से हेलीकॉप्टर पर फौरी जवाबी फायरिंग। इसी दौरान वर्दी पोश दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरकारी TV TRT की राहदारियों में दाखिल हो चुका था। वो कौम की स्क्रीन को खामोश करना चाहते थे। उन्होंने TRT के मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और इदारे के आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान उस वक्त अपने खानदान के साथ मारमरिस में थे। आधी रात के बाद 12:24 पर वो फोन के जरिए बराह रास्त वीडियो कॉल पर TV चैनल से मुंसलिक हुए। उनकी इस तारीखी पुकार ने रात का पूरा रुख बदल कर रख दिया। सदर ने आवाम से इन अल्फाज में खिताब किया, मैं अपने आवाम को अपने शहरों के चौकों और हवाई अड्डों पर जमा होने की दावत देता हूँ। हम बतौर कौम चौकों और हवाई अड्डों पर इकट्ठे होंगे और इस अकलियती ग्रुप को अपने टैंकों के साथ आने दें। वो आवाम के सामने जो करना चाहते हैं करें, मैंने आज तक आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं देखी। इस आवाज़ के साथ ही लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। रात 12:56 पर अंकारा पुलिस हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की गई। रियासत के तमाम हिफाजती इदारों और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा था। अंकारा के गोलबाशी में वाकई टर्कसैट की इमारत भी उस तारीख रात में बमों का निशाना बनने वाला एक और अहम मरकज थी। और रात के 2:18 पर उस बगावत की कोशिश और मुल्क की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ आया। स्पेशल फोर्सेस कमांड में ड्यूटी पर मौजूद सीनियर सार्जेंट मेजर उमर खालिद दिमिर ने उस हुक्म को कबूल किया जिसका अंजाम शहादत था। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बागी जनरल समी तर्जी को हेडक्वार्टर्स में दाखिले होने से पहले ही गोली मारकर हलाक कर दिया और खुद वहीं जाम शहादत नोश कर गए। जब गोलबाशी से दूसरी बार एक बड़े धमाके की आवाज़ आई तो वक्त रात के 2:20 का था। बागियों ने अपने कब्जे में लिए गए जट तैयारों से गोलबाशी में वाकई स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे दर्जनों जांबाज पुलिस एहलकार शहीद हुए। आखिरकार उन्होंने तुर्की की पार्लिमानी इमारत को भी निशाना बनाया जो अवामी इरादे का मरकज है। जब जंगी तैयारे कौमी खुद मुख्तारी के दिल पर बम बरसा रहे थे तो अवाम के नुमाइंदे पार्लिमान के जनरल असेंबली हॉल में बगैर किसी खौफ के जमहूरियत के पहरे पर बैठे थे। रात 3:20 पर सदर एर्दोगान मारमरिस से इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पहुंचे और वहां उनका इस्तकबाल करने वाले हजारों शहरियों से उन्होंने खिताब किया। यह कार्रवाई सरासर गद्दारी की कार्रवाई है, यह एक बगावत की तहरीक है और इस वतन से गद्दारी की कीमत उन्हें बहुत भारी उठ चुकानी पड़ेगी। मैं ये बात पहले ही वाज कर दूँ। सुबह के 6:19 हुए थे। शहर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रही थी। तुर्की के मुतादत मकामात पर शहरियों के अपने सीने ढाल बनाने की वजह से बागियों का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया गया था। अपनी शिकस्त को भांपते हुए फेतों के कारिंदों ने आखिरी वार के तौर पर सदारती कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द बमबारी। मुल्क दुश्मनों की इस बगावत की कोशिश को 24 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया। सुबह 6:40 पर स्क्रीनों पर यह खबर आई कि 15 जुलाई के शहदा के पुल पर मौजूद बागियों ने हथियार डाल दिए हैं और वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। गिरफ्तारियों की तादाद तेजी से बढ़ गई। अदलिया फौज और पुलिस में सैकड़ों अफराद को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। सुबह 8:26 पर अकिनजी एयरबेस पर यरगमाल बनाए गए जनरल स्टाफ के सरबराह खुलूसी आकार हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। उन्हीं मिनटों में जेंडरमैनी जनरल कमांड को भी फेतों के दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। जमहूरियत के हीरोज़ की मुजाहमत रंग लाई थी और वह कामयाब हो चुके थे। वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम ने दोपहर 12:57 पर कैमरों के सामने आकर इस खुशखबरी का ऐलान किया कि बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। तुर्की ने उस तारीख रात में अपने वतन के 253 बेटों की कुर्बानी दी जो शहीद हुए, जबकि 2000 से ज़ायद जमहूरियत के गाजी जख्मी होकर गाजी